इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है, तो इसमें तो सिर्फ डूबना ही डूबना है भाई। इसके अंदर अगर सोचो, इसके अंदर किनारा मिलेगा, किनारा नहीं मिलेगा।

0: تلس هذا لقوا يلا لقوا تلا تلا
1: لا يقرا هذا يك بلغة كونا بس هذا راح
0: تلا تلا
2: ये जो फालतू बोले
3: पल है समा बाहों में आ जा
0: ये तो दो सा बड़ा करवा ले करें हां हमें देखो काम में है
2: एक पार तो हमारा ये अस्थाई को बसाकी को हो गया एक पार हमारा अस्थाई को हो गया फिर वो दोबारा बहुत भोगोल करने पड़ेंगे हमें
4: One, two.